ग्रह वस्ते मिल वात न करते पाई, एक वस्त बिन पंच दुहेले ओ वस्त अगोचर ठाई, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई।

आई पांच जना मिलत मंगल गाया हर नानक भेद न पाई मेरे राम राय इन विद मिलै गोसाई सहज भया प्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाय रहाओ। दूजा गौड़ी महला पंजवाओ ऐसो परच्यो पायो कृपा कर करी कृपा दयाल विठुले सतगुर मुझे बतायो रहाओ। जत कत देखियो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो कह पय करियो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो। लह्यो सहसा बंधन गुर ते तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मंड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान इक ठाई तो बाहर कैठे जायो। एक कनिक अनिक भांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक भ्रम गुर खोई है इव तत्तै तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा औध कटे दिन सिरै नारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ। करियो बेनंती सुनो मेरे मीता संत तैल की वेला इहा खाट चलियो हर लाहा आगै वसन सुहेला। इहो संसार विकार संसै मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पियाए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आई सोई बिहाज्यो हर गुरते मने वसेरा निज कर मैल पाव्यो सुख सहजे वर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास एही सुख मांगै मोह कौ कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजमा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ। पंच विखादी एक गरीबा राखो राखन हारे खेद करहे अर बहुत संताव हे आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो निक बहु पांती छोड़े कतहू नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोह तिनते तीरज पाया संति मंत दियो मोहे निरपौ गुर का शब्द कमाया। जीत ले ओए महाविखादी सहज सुहेली वाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपौ संग तुम्हारे वास्ते एहो डरन कहां ते आया रहाओ। एक मैल तू होए अफारो एक मैल निमानो एक मैल तू आपे आपे एक मैल गरीबानो। एक मैल तू पंडित वक्ता एक मैल कल खूत होता एक मैल तू सब किच ग्राहज एक मैल कछु न लेता काठ की पुत्री कहाँ करे बपुरी खिलावन हारो जाने। जैसा पेख करावै बाजीगर ओहो तैसो ही साज आने। अनेक कोठरी बहुत भांत करही अनेक कोठरी बहुत भांत करिए आप हुआ रखवारा जैसे मैल राखै तैसे रहना क्या एहो करे विचारा।

मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंधकूप मैं हाथ दे राख्यो कछु सियानप कतना मोरी रहाउ करन करावन सब किच तुम ही तुम सम्राट नाही अनहोरी तुमरी गत मैत तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै जैसे दृष्ट ओहो चंद चकोरी राम संत मैं भेद किछ नाही एक जन कई ही राम संत मैं भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कही ए प्रगट प्रभ हुआ आंदन कीर्तन दर्शन हरमोरी तुम सम्राट अपार अत ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक प्रभ कृपा नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन के संग संगोरी गौड़ी महला पंजमा तुम हर से तीराते संत हो नवाहे ले हो मोह को प्रक वधाते ओढ़ पहुँचाव्यो दाते रहाओ तुमरा मर्म तुम्हें ही जानिया तुम पूर्ण पुरख वधाते राखो शरण अनाथ दीन कहो करिहो तुम्हारी गाते तरण सागर वोहित चरण तुम्हारे तुम जानियो अपनी पाते कृपा जस राख्यो संगे ते पार पराते

संत प्रसाद नानक हर भेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मुको सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको आचार्य गुरहे दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनहे प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अन पै ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुख है ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किछ आवत ना किछ जावत सब खेल कियो हर गायो रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ताह की ओट कही जैरे जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग्यो हर जन हुकम बूझ सुख पाई है रे जो प्रभ करै सोई भल मान्यो सुख दुख ओही त्याई है रे कोट पतित उधारे खिन मैं करते वर न लागै रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस पावै तिसे निवाजै रे सब को मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तो उठना

सतगुर प्रसाद हर हर कभू ना मन हो विसारे इहा ओहा सर्व सुखदाता सगल कटा प्रतारे रहाओ महाकस्त काट किन भीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर शरणी जलती अगन निवारे गर्भ कुंड नरक ते राख पब जल पार उतारे चरण कमल अराधत मन मह जमकी त्रास विदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारे काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक

से तनम अंत दिसहे जुग माही तिन को सब निभे अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवहे साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाए।

मन से मन मिलाए साप जग जीता। एन बिद कुशल तेरा हमारे मेते एन बिद कुशल तेरा मेरे मीता। सतगुर सेवे सो फल पाए हृदय नाम इच्छो आप गवाए। अनहद बाणी शब्द

अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर जस सो हर रस पावे। आन दिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पाओ परम पद सुखा। रहाओ हृदय सुख भया परगास, गुरमुख गावे सच गुणतास।

गुरमुख बोध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय रवे आचरण निवास, जिस नाम दे सोई जन पाए, गुरमुख मेले आप गवाए, हृदय साचा नाम मुसाए, नानक सहजे साच साच समाए, गौड़ी महला तीजा, मन ही मन सवारिया, पह सहज सुभाए, शब्द मन रंगिया लिवलाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए।

सके पाछे तिन्हु कोल संप्रान संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी अहं बुद्ध सोच कर्म कार एह बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा करो नानक दास दसानी

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन्म के बड़ भाग बडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपतासें, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उदम।

रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी धरिया, सिर सिर रिजग संभाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। उडे ऊड आवै सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया,

की देहमो कोटक विशन महेश कोटिंद्र ब्रह्मा गते रावसस क्रूर जलेश दोहरा राम गता जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एक कथा सुने अरगावै दुख पाप दे निकट न आवै मिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़बदी प्रथम सुख दावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सदर्भ तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो

सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौआंग तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सवै बहु भेद गाय अमेक ना जान्यो।

सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया प्रपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहतूरे, मुदावणी महला पंजवा, थाल विष्टिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब साधारो, जे को खावे जे को पुंचाए, तिसका होए उदारो, ए वस्त जी रह जाई, निद निद राघुर धारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म सारो, श्लोक महला।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए विरंगत गुर ते अमरदास रामदास वहीं सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरम श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई आज रिठे शब्द हो जाए।

इतनी सेवा प्रवान कर लीजिए, कीर्तन कर दे आप बल्लो दे माफी भूषण साहब। अगत सिंह जी आप जिन पत्र बाणी कथा राही लोगे उन्होंने पासों प्यार से शर्म करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे ही वड्डे भागां वाले हो जो गुरु चरणा नाल जुड़ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वो विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आपां विचार कर रहे हां ये पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया। आसा राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 414 उत्ते सुशोभित है। इस पावन शब्द दे चार पदे आपा विचार चुके हां। कल आपा विचार कीती सी सगली जोत तेरा सब कोई वाहिगुरु जी। सारे जीवां विच तेरी जोत वरत रही है। जदों ओ अपनी जोत नूं खिच लैंदा है अपनी सत्या अपनी पावर अपनी ताकत नूं खिच लैंदा है फिर भावें जिन्ना मर्जी भारा लम्मा चौड़ा तकड़ा शरीर होवे पर ओ फिर ना चल सकदा है ना तुर सकदा है ना देख सकदा है ना बोल सकदा है क्योंकि परमात्मा ने अपनी जोत खिच लई। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਸੋਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ

कि भाई वो परमात्मा आप ही सब कुछ करता है ते इस संसार विच ओही कुछ हुंदा है जो वो परमात्मा आप करता है। वो की करता है? ताहे उसारे की करता है? इस सृष्टि नूं ढा दिंदा है ते ढा के फिर उसार दिंदा है। हुण ढाण दा भाव की है? जेकर आपां अखरी अर्थ करांगे ना ते किसे चीज नूं ढा देना ते उसारण दा भाव अर्थ करांगे भी उसारी कर देनी नवे सिरियों, ते जदों इहदे भावार्थ करांगे ते भावार्थ बनदे ने वाहिगुरु जी आप ही संसार दे जीवां नूं मारदा है ते आप ही फिर उन्हां नूं जन्म दिंदा है। कई बार जदों आपां गुरबाणी नूं पढ़दे आ जदों अखरी अर्थ करिए ते अखरी अर्थ कुछ होर हुंदे ने ते जदों उहदे भावार्थ करिए भाव अर्थ ओ बड़े दूर जाके निकलते ने। ते गुरदेव पातशाह जी कह रहे ने कहने लगे

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याही है, जिस दिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नाउन दे आवे ताए, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलना जी। निमाणिया दे मान, निताणिया दे ताम, निओटिया दी ओढ़ने, आसरिया दे आसरा, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी दे हजूर दास बेनती आप जी ने कृपा रहमत की है, अमृत वेले तो सोहने तख्तां दे प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हैं। आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान की संपूर्णता परंत आप जी के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है, बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना आप जी के भाणे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना, आपके भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपन सेजा ते विराजमान होवो, संगतां नूं खुशियां बख्शो, अमृत वेले दे जग ने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिना मिले आमदा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत्ता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु।

प्रभु कै सिमरन तीर्थ शनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन होए सो भला, प्रभु कै सिमरन सफल भला, से सिमर है जने आप सिमरा, हे नानक ताके लागो पाए, प्रभु कै सिमरन सबदे उच्चा, प्रभु कै सिमरन उदरै मुच्छा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सबके सुजाए, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम अमृत माहे समाए, प्रभु जी बसे साधु की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनमंते, प्रभु को सिमरे से पतमंते,

अष्टपदी जय मात पिता सुत मीतना पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाय जय महाभयान दूत जम दला केवल नाम संग तेरा चल जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनक पुना चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सूख नेरे सगल सृठको राजा दुखिया अर्गा नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस्तरा अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आगा वे जी मार्गे जात अकेला तय हर नाम संग होत सुहिला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नान गुरमुख परम गद पाई है छूटत नहीं कोट लगबाही नाम जपत है पार पराही अनक बिगन जाय संगार है

जन के ओठ सतानी पर प्रताप जन अवर न जानी ओ तपोत जन हर सराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जप हर का भगत प्रगट नहीं शप हर की भगत मुक्त बहु करे नारंग जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लत्था नाम की महिमा संतर दवसाय संत प्रताप दुर्त समरसाय संत का संगवट भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए सलोक।

अष्टपदी जय प्रसाद क्षती अमृत खाहे तुष्ठा गुरु को रखमन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सेमरत परम गद भावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तसे ध्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरोत सरसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याए ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख से जय सोई जय मनाड पहर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तू सब कहो माने मुख ताको जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म।

हर हर जस कहत जय प्रसाद रे सगल शिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद उजगोना पहुचाए मन सासा सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद भूखन पहरी जय मंत सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्वहस्त सवारी मंत इस प्रभु को कबहू नाम बिसारी जय प्रसाद भाग मिलख तना राग प्रो ये प्रभु बने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठ बैठ सा तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे बन बहु दान मना आठ पैर कर दिसका ध्यान जय प्रसाद आचार व्यवहारी इस प्रभु को सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप

ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह नानक जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रकाश जैसे तरु भरे आकाश।

ब्रह्मज्ञानी सर्वगा ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंतरा पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सत जीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष।

ज्ञानी सर्वगात नहीं सलोक और ताराए जो अंतर नाम सर में पिखा भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक आपर्ष सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्स पात्र रूप न पेखा नेत्र साध की टहल संत संहेत करना सुनाय काहू की निंदा सबते जाने आप इसको मंदा गुर प्रसाद भखिया पर हर मन की वासना मन ते डराय इंद्री जित पंच दोगते रहत नान कोट मधे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न मिशन की माया ते हो भिन्न कर्म कर तो वह नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउफल की इच्छा नहीं बादशाह है केवल भगत कीर्तन संग्राच है मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आवरे अवरे नाम जबावे नान को वैष्णो परमगत भावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संगमंत बिंस सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग बाबा मलख होवे तुस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल कराय नित नीत मंत्र अर्पय बिशन प्रीत अर्गे जन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म मैं शुद्ध राम नाम सारस पीवे उस पंडित गए उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो ना आवे वेद प्राण सिमरत बुझे मुन सुख मैं जाने असूल

सरोक उस्तत करे अरे गजन अंत न पारा बार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बान भ्रमे उदासी कई कोट भेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट गपका विचारे कई कोट डवतन नाम ध्यावे नानक करते कांत ना पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट आंध अज्ञानी कई कोट विकृपन कठोर कई कोट अभिग आत्मनि कोहर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जिजित लाभो तित तलगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बिरखन बजाए कई कोट पवन पाणी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर अनाखे आतर कई कोट देव दानव इंद्र शेर शतर सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार कई गुण राजस्थान सात कई गुण वेद प्राण सिमर तर शास्त्र कई गुण किए रतन समंद कई गुण नाना प्रकार जन कई गुण किए चिर जीवे कई गुण गिरी मेर स्वर्ण थीवे

सुस्थान का नहीं विनास। मंथन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जर में जर आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु गए सतगुरबान। सलोक सुखी।

डराया सह जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्ज में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुरप्रसाद तत्सबुजिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असूल न के जन्म न किश मरे आपन चलते आप ही कराए आपन जामन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञा कारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत राय थाप थाप विनाशी नाय किश खंड धारण धार्य ब्रह्मंड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाय था नानक जाप जन प्रभ जाता सो शोभावंत सकल संसार उतरे तन मंत प्रभ के सेवक सकल उदार प्रभ के सेवक दुख विसार नापे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनू कृपा करे बट भागे नाम जब पावे विश्राम नानक तन पुरख का उत्तम करमान जो किश करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हो वै सो हो करने हार पछाणा सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टान शिव जित समाय समाय सुख निधान वह सुख निधान उन्हों बने आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाग सिमरन उतरी आय नानक तिस बलिहार अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया बे प्रतपाल सगल की चिंता जिसमन माहे दिसते बिरथा गोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी ब्रभ आपे आप अपन किया कशु न हुए जैसो प्राणी लोचा हुए

나랑가 계셔 드래곤데 브라펜너 뜻을 해보자. 에난가 소바 소프르산 अबे नासी प्रमन में राग मानु की तुम प्रीत त्याग तस्ते परायना ही किश को सर्व निरंतर एक को सोए अपे बिना या पे दाना गहर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाऊ नान कैमन हे अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र पूर तिसका मंत्र ना जाने होर अंतरूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए कर ताके राज मैं राजोग मैं जोगी तब मैं तबिसर ग्रस मैं भोगी।

राष्ट्रपति संत जना मिल करो विचारे सिमर नाम आधार पर पाप समीत बिसारु चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो पर समराथ दृढ़ कर गहो नाम अरभ ए तन संचो भगवान संजना का निर्मल मन दे का सराको मन माए सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण उड़ता में सो तन हर सेवा ते पावे जिसो कुनत बाचे में सो सुख साधु संग वरीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुग भावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अभगत लाए

जागे हृदय बसे प्रभ सोए, तागो बिघना लागे कोय, जागे हृदय बसे हर सोए, गलता ती ठंडा हर नाऊ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पावन से पूर्ण हुए आज भगत पाया तम बरगास, तित कर जाय बसे बनासी, गहो नानक काटी जम फांसी।

चरण तोय भगजना के मंदरंग बिरला गौ पावे संग एक बस दीजे कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कही ना जाए नानक रया सर्व समाए प्रभग शांदीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटान।

जीजंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानके को बसरिया दूजा के दृष्टार। अष्टपदी आप कथा है आप सुनने हार, आपे का विस्तार जात सभावित सृष्ट उपाय, अपने भाणे लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किशो आपन सु सब जगत परोए, जागो प्राप जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का वेता, नानक सकल सृष्ट का जेता।

मंदे बहुजाय सचवा पार करो बाबारी दरगह ने बह खेब तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आ मैं जाहे तिस्ते दूर गां को जाय परे राखन हार ते आए नर भाव जपे सकल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटा जिस प्रभु राखे तुस नाही दुख नाम जपत मनो वसुख चिंता जाय मिटे अहंकार तन को कोय न पहुचन हार सिर पर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेगत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनुभव सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परमानंदर जामे पुरख प्रधान।

संजना सुने सु भजन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता दुसकी रहत साध भजन साधु सब कहत जो जो ऐसो सुख मान करन करावन हर प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सा मोही आप सद किया सब सत तिस प्रभ दे सगली उत्पात तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार अनक लाल की न जाए जिस भावे तिसलाए मिलाए कमन निकट कमन कहिए दूरा पिया बा भरपूर अंतर गात जिसाब जनाए नाम जना बुझाए

आप छोड़ बेंदी करहो सा संग अगन सागर तरह अर्थन के पर लेहो पंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितबो नारायण एक एक गुरु बजा के रंग अने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपार सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के

नानक पभे न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोहे पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव दरगह मान पंच सुह है दार राजान।

दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख न सकै कोय देखो खाए को आख न पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए।

आ रही है अमोल पंडहर अमोल आव है अमोल लय जाहे अमोल पाए अमोल समाहे अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तुल अमोल परवान।

अजीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगाज है, अपाज है, अचूज है, अचाज है,

धर्म नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं।

चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं पेह हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं भजंग प्रयात छंद

प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे अखल धर्मं अलाह करमं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग पूता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत वे प्रसाद आदि रूपे अनाद मुहूर्त अजोन पुरखे पार सर्व मान तिन मान देवे पेवे आदि उदार सर्व पालक सर्व कहालक सर्व

खेल खेल अखेल खेल अनंत को फरेक देव पे बिना जान ही देह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जान ही कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र चक्कर बकर फिरे चत

ਸਰਬਤਰ के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र तरान है के सर्वत्र पराण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं कलीम है के परमं फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है

रसावल शांत वै प्रसाद। नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे

के सर्वर गवान है हमें सलरवान है। तुम आमल तमीर है सुबह तल अरीर है, परंग परम ईस है सुबह तल अदीस है।

आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा कर वे कटे ज्ञान अंजन सारिया।

जाए विण सहजे सहसा न जाय नह जाय सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए सहसे जीओ मलीन है कित संयम धोता जाय मन तो वह शब्द लागो हर से और चित लाए कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजाय।

यह निर्मल सदगुरते करनी कुमाणी कूड़ की सोए पहुचै नाही मन सा सुमाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मर निर्मल सदा रह गुरु नाले।

कहे नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए जे को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थे कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी परम आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए

गुरु मिलया दिब दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, सात्य सुनना नो पठाए, सात्य सुनना नो पठाए, श्री लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरे आहो आ, रसना रस माणी, सच अलख विडाणी, ताकि गत कही न जाए, कहे नानके अमृत नाम सुनो, पवित्र हो बहो, सात्य सुनना नो पठाए,

0: सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब तन सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय न सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच लियाओ वड्डी वड्याई जा नहीं चलथाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई पूजा सभाओ

संतो के जिन सचो सत्य आया, उन्हें मंदिर पे नरक का शुक्र धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीश अगला नित

और मत सुरो अगली हो वजो भी दुना खाए खसम करे बराबरी फिर गहर तंदर पाए वजो कवाए अगला मोहे मोपाना खाए जिसका दिता खाना जिसका या सब नारक अपना।

परम सम्मान योग चुको चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान गुरु रूप साध संगत जी आप सारे बड़भागी हो तंता दे योग हो अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ी हुई समूह साध संगत सारे ही बड़भागी हो जो सतगुरां दे चरणा नाल जुड़ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो सतगुरां ने अमृत वेले पावन फुरमान बख्शिया पावन हुक्मनामा बख्शिया उसकी विचार आपां कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस ओ पावन शब्द तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया होया

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हमें सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याही है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधि आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी। सब थाई होए सहाय।

सार हाउ भीख दिखावै सच न कमावै कहतो महली निकट न आवै अतीत सदाई माया का माता मन नहीं प्रीत कह मुख राता कहो नानक प्रभ बिनस सुनी जय गोचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वड़ियाई तुम सुख दाते पुरख सुपाई रहाओ दूजा सुई महला पंजवा बुरे काम का ओठ खलोया नाम की वेला पै पै सोया अवसरे अपना बूझे ना ए आना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिगस फूल बैठा साजना का दर्शन ना डीठा कबू न समझे अज्ञान गवारा बहर बहर लपट्यो जंजारा रहाओ बेखै नाद करन सुन पीना हर जस सुनत आलस मन की नाम दृष्ट नाही रे पेखत अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दी जय तौ किछ पाईऐ जो होइऐ रीना जिसे बजाए तिस नाम लैना रहाओ सुही महला पंजवा घर में ठाकुर नजर न आवै गल मह पाहुण लै लटकावै परमे पूला साकत फिरता नीर विरोलै खप खप मरता रहाओ जिस पाहण कौ ठाकुर कहता ओ पाहण लै उस कौ डुबता गुनहै गह गुनहै गा।

सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ। पार ब्रह्म जप पहर सना कोट आवद तिस वेदत नाही। हर चरण शरण गढ़ कूट हमारे काल कंटक जम तिस ना बिदारय। नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मुरारी। सूही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाह आनंद विनोद मंगल सुखताह। चल सखिए प्रभ।

मन तन प्राण जियो अरपा हर सिमर सिमर मन मोकटाम दीन दयाल करिहो उत्साह नानक दास हर शरण समाहा सूही महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभ चरण कमल रिद माही निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो हर अनेक व्यंजन।

जनता की जन्म जन्म के पै मो निवारे नानक दास प्रभ कृपा तारे सूही महला पंजवा निकवींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करे आओ तुम्हें छिड़ाए लियो जने अपना उर्ज परह्यो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दोख महाबिकराला खिन मह दूर किए दया लाओ सोग रोग बेपत अत पारी दूर पई जम नाम मुरारी दृष्ट तार लीनो लड़लाए हर चरण गए नानक शरणाए सुई महला पंजवाओ दीन छड़ाई दुनी जो लाए दुही सराई खुनामी कहाई जो तिस भावै सो परवाण अपनी कुदरत आपे जान रहाओ सच्चा धर्म पुन भला कराए दीन के तैसो दुनी न जाए सर्व निरंतर को जागै जित जित लाया तित तित को लागै अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोलै बुलाया तेरा सूही महला पंजवा प्रातः काल हर नाम उचारी ईत ऊत की ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवे मन के काम रहाओ।

सुख आनंद बिहावै जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक नाम ते आया सूही महला पंजवा गुर पूरे जब पै दयाल दुख बिन से पूर्ण पई काल पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई जप हर हर नाम अचार्य प्रताप जाल न साखे तीने ताप निमख न विसरे हर चरण तुम्हारे नानक मांगे दान प्यारे सूई महला पंजवा से संजोग करहो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे सुन बेनती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदार साला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करहे बसे तिस नेरा जन की पूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवनहार

अमृत नाम चलै जप नाला नानक जाचै संतर वाला सोई महला पंजवा तिसवर दूजा और न कोई आपे थमै सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण समरथ अपार रहाउ सब रोग मिटावे नवा नरोआ नानक रखा आपे होआ सोई महला पंजवा।

आए हर गुण गावो नारी अंधन भगत करहे गुर आगे सातन कंत प्यारी गुर का शब्द बस्या कट अंतर सेजन शब्द सुहाए नानक तिन कर ही सद ही सोला नानक तिन कर सद ही सोला हर कर किरपा करे आए भगत मना आनंद पया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नामन बसाए हर की अमृत बाणी जिना मन बस जिन मन बसया से जन स्त्रे कटकट शब्द समाणी तेरे गुण गावे सहज समाव है शब्दे मेल मिलाए नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए शांत संगत स्यों मेल पया हर हर नाम समाए राम गुर के शब्द सत जीवन मुक्त पए हर के नाम रिबलाए राम हर नाम चितलाए गुर मेल मिलाए मनुआ तरता हर नाले सुखदाता पाया मोह चुकाया अंधन नाम समाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन कर सद ही सोला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम बुलाया हर का महल न पाया राम गुरमुखे एक मेल मिलाया तिनके दुख गवाया राम तिनके दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावे रंगराते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करे दर जापे कर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सुहिला सच्ची सच बाणी शब्दे ही सुख होई सोही महला तीजा जे लोड़े बर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम सदा होवे सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम हर जियो मरे न जाए गुर के सहज सुभाए सातन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द सिगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप पाया नानक सदा पिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया पिर पायड़ा बालड़िए अंदिन सहजे माती राम गुरमति मन आनंद पया तित तन मैल न राती राम तित तन मैल न राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए अंदिन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वड़ियाई प्रभ रावे रंग राती फिर रावे रंग रातड़िए फिर का महल तिन पाया राम सो सहो अत निर्मल दाता जिन विचों आप गवाया राम विचों मोह चुकाया जा हर पाया हर का मन मन पाणी अंधन गुण गावे नित साचे कथे अकत कहानी जुग चारे साचा एको वरते बिन गुर के ने ना पाया नानक रंग रवे रंग राती जिन हर से चित लाया कामन मन सोहिलड़ा साजन मिले प्यारे राम गुरमति मन निर्मल हुआ हर राख्या उर तारे राम हर राख्या उर तारे अपना कार्य सवारे गुरमति हर जाता प्रीत मोह लिया मन मेरा पाया करम विधाता सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वस्या मन मुरारे नानक मेल ले गुर अपने गुर के शब्द सवारे सुही महला तीजा सोहिलड़ा हर राम नाम गुर शब्दी विचारे राम हर मन तनो गुरमुख पीजै राम नाम प्यारे राम राम नाम प्यारे सब कुल उधारे राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया कर अनद सुरत सुमाणी हर हर एक पाया हर प्रभ नानक कृपा तारे सोहिड़ा हर राम नाम गुर शब्दी बिचारे हम नीमी प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलया जाए राम गुर मेली बहु कृपा तारी हर के शब्द सुभाए राम मिल शब्द सुभाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माने सेज सुखाले जा पर पाया हर हर नाम समाणे नानक सुहागण साबड़ भागी।

0: ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਣ ਮਤ ਲਾਗੇ ਮਰ ਜਾਏ ਬੋਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰਹਾ ਕਹਾ ਕਰੋ ਅਭਾਗੈ ਰਾਮ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਕਟੁੰਬ ਜਵਾਇਆ ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਕੰਠ ਗਹਿਣ ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਰਾ ਸੁਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਕਾਂਪੇ ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਕਰ ਸੀ ਪੀਓ ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਧਨ ਵੀ ਜਾਏ ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਰਹੋ ਕਾਚੇ ਕਬਰੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਣੀ ਕੁਹਾਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿੰਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰਲੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਪਧਾਰਾ ਕਾਗ ਉਡਹਾ ਭੁਜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿ ਕਬੀਰੇ ਕਥਾ ਸੁਰਾਨੀ ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਮਲ ਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਕੰਠ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਤੈ ਕੱਟਿਆ ਕਿਆ ਗਵਾਇਆ ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਚੱਲ ਦਲਹਾ ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗੇ ਕਾ ਆਇਆ ਰਹੋ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਵ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਲਿਓ ਨਵੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ ਕਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰਿਓ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ ਸਰਾਏ ਗੁਜਾਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਗਾ ਇਤੋਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜੀ ਤੇ ਮੋਲੇ ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗੁਆਇਆ ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਭੈ ਪਰਾਇਆ ਕੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਰ ਭੁੱਲੇ ਖਸਮ ਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰੁੱਲੇ ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਾਲਤ ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਵਰਨ ਸਨ ਤਾਕੈ ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਜਰਾ ਹਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤ ਤਾਕੀ ਏਕ ਨ ਤਾਕ ਸਮਾਇਆ ਬਾਬਰੇ ਤੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਰਹਾਉ ਜਬ ਲਗ ਜਾਬ ਲਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੇ ਸਰੇਵੋ ਤਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਸਾ ਜੇ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੋ ਨਾ ਜਾਸੀ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਾਸਾ ਜਿਸ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ ਅੰਤਰ ਚੁੱਕੈ ਤਿਸੇ ਪਿਆਸਾ ਹੁਕਮੇ ਪੂਜੇ ਚੌ ਪੜਖੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਢਾਲੇ ਪਾਸਾ ਜੋ ਜਨ ਜਾਨ ਭਜਨ ਅਵਗਤ ਕਹੋ ਤਿਨਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਨਾਸਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਕਬੂ ਨਾ ਹਾਰੇ ਢਾਲ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਾਸਾ ਸੂਈ ਲਾਲਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਏਕ ਕੋਟ ਪੰਜ ਸਗਦਾਰਾ ਪਾਂਚੇ ਮੰਗੇ ਹਾਲਾ ਜਮੀਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬੋਈ ਐਸਾ ਦੇ ਦੁਖਾਲਾ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੱਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਪਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪਹਿ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਤਿੰਨ ਹੋ ਲਿਆ ਵਾਰੀ ਰਹੋ ਨੌ ਡੰਡੀ ਦਸ ਮੁਸਤ ਧਾਵੈ ਰਈਅਤ ਵਸਣ ਨਾ ਦੇਹੀ ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾਪੇ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਟਕਸਾਲਾ ਲੇਹੀ ਪਹਿਦਰ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇਆ ਉਹਦੀਆ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਧਿਆ ਬਾਕੀ ਰਮਜ ਨਕਾਈ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਕੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕੋ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ ਏ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ ਤਜ ਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇਹੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੈ ਅਬਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਨੇ ਅਪਾਖੈ ਸੋ ਕੁਤ ਜਾ ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੋ ਦੁਖੀ ਦਰ ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪੱਖ ਕੀਨੀ ਨਹਿ ਜੇ ਨਹਿ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ ਪੁਰਸ ਲਾਤ ਨ ਪੰਥ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਖ ਨ ਸਾਥੀ ਕਵਣ ਅਕੇਲਾ ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਵਾਬ ਨ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਕਰਗਤ ਮੇਰੀ ਸੂਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰਨਾਈ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਰਨਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਣਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਰਹੋ ਜਿਨ ਜਿਉ ਦੀਆ ਰਿਚ ਕੰਭਾਰ ਵੈ ਸਭ ਘੱਟ ਪੇਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੈ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾਟ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਦੇ ਦੇ ਸਿੰਧਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਧਾਨ ਦੀਵਾਨੇ ਚੇਤਸ ਨਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਫਨ ਪਾਨੇ ਸੂਹੀ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ ਇਹ ਘਰੀ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ ਜਲ ਗਏ ਉਹ ਘਾਸ ਰਲ ਗਏ ਉਹ ਮਾਟੀ ਰਹਾਉ ਪਈ ਬਾਂਧ ਕਟੁੰਬ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੋ ਕਾਟ ਸਵੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਹ ਤਨ ਲਾਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ ਕਹਿ ਰਵਦਾ सबे जग लुटिया हम तो एक राम कह छूटिया क्यों कार सतगुर प्रसाद राग सूही शेख वरीद जी की
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत जूनी सह भंग गुरप्रसाद राग बिलावल महला पहला चौपदे कर पहला तू सुल्तान कहो मिया तेरी गबन बड़ाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहाओ जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंदर क्या चतुराई क्या हाँ कथी कथे कथ देखा मैं अकथन कथना जाई जो तुद भावे सोई आखा तिल तेरी बड़ियाई इत कुकर हो बेगाना भौका इस तनताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खस मै नाउ ना जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन बेस कलंदर कट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसता बहुड़ जन्म न आमा मन बेद्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहाओ अगम गोचर अलख पारा चिंता करो हमारी जल थल मही अल पर पूर्णिना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर शावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गामा नित तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद भावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखै तान तू दाता नाम प्रवान ऐसा नाम निरंजन देव हम जाचक तू अलख भयो रहाओ माया मोह तरकटी नार पूडी कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार ना मिले चानन अंधियार चख छोड़ी सहसा नहीं कोई पाप दिसे विजात न होए एक को नाही पौ कोई करता करे करावे सोए शब्द मुए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचे धारिया अब न सूझै गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुर बचनी मन सहज ध्याने हर के रंग रता मन माने मनमुख परम भूले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जीरा रह न सकै खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाऊ मेरा प्र बिसरै हों मरों दुखाली सास ग्रास जपो अपने हर पाली सद बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली कथ कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम गोचर दे दिखाए बिन गुर करणी क्या कार कमाए हो मैं मेट चले गुर शब्द समाए मनमुख मनमुख बिछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले सबास हर कृपा धारी दासन दास जन नानक हर नम जन नानक हर नाम धन रास बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटंब सहत स्यों जित हुण खसम न पाया पौड़ी छुटकी फिर हाथ न आवै अहला जन्म गवाया दूजा पाउ न दे लिव लागण जिनी हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिन कह तैं दुख निवारे रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या है जंत विचारे मुकत बंद सब तुझते हुए ऐसा आख बखाने गुरमुख होवै सो मुकत कहिए मनमुख बंद विचारे सो जन मुकत इस जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई सच्चे आप सवारे परम पुलाणे से मनमुख कहिए ना उरवार न पारे जिसनु नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द समाले हर जन माया माहे निस्तारे नानक भाग होवै नानक भाग होवै जिस मस्तक काल है मार बेदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोई तिसदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसे मने आए ता को जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तुले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते हुए जिसनु मेले सो निर्मल हुए जिसनु लाए लगे तिस आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिवतात है आप आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बिलावल महला तीजा, साहेब ते सेवक सेव ते साहेब ते क्या को कहे बखाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है सब में एक समाना, सतगुरु परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए, अंदन लागे सहज ध्यान ना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा बखियाना, आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना, ज्यो आप चलाए ते वे कोई चाले ज्यों हर पावे भगवाना, कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे काम, एक ना करम दे विड़े एक परम पवे अभमाना, बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरे वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड़ेई मत को धरो गुमाना, सतगुरु की निज सतगुरु की जिसनु मत आवे सु सतगुरु माहि समाना, ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ, चौं जुगा का हुण नवेड़ा नर मनमुखानू मन मनुखानू एक निधाना, जत संजम तीर्थ उना जुगा का धर्म है कल में कीर्त हर नामा, जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी त्याया हर हर जगते पूरे प्रवाना, कहत नानक सचे स्यों प्रीत लाए चूके मन अभमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना, बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनु आपे लाए, तितकर बिलावर गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावो आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए, हों तिन बलिहारे जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई, हर गुण गावे सहज सुभाई रहाओ, सदा रंग राते तीरे चाहे, हर जीव आप वसे मन आए, आपे सोभा सद ही पाए, गुरमुख मेल मेल मिलाए, गुरमुख राते शब्द रंगाए, निज कर वासा हर गुण गाए, रंग चुलुले हर रस पाए, इहो रंग कदे ना उतरे साच समाए, अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा, सतगुरु ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा, नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुरु मेरा, बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड़ियाई पाए, चंत नाम बसया मने आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर न काजा, अंदन अंध होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख बहुड़ न मरे ना जम पेखे, कर ही मैं सब कोट निधान, सतगुर दिखाए गया अभमान, सदी लागा सहज ध्यान, अंदन गावे एको नाम, इस जुग में वड़ियाई पाई, पूरे गुरते नाम त्याई, जह देखा तै रहा समाई, तू सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पा गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अतमीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया, राग बिलावल महला तीजा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत बजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना, जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ, माया गिरसत भ्रमत है प्राणी, रख ले भोजन अपना, ज्यों प्रहलाद हरणाखस गरस्यो हर राख्यो हर सरणा, कवन कवन की गत मित कहिए, हर किए पतत पवन्ना, ओ दोवै ढोर हाथ चम चमरे, हर उधरेओ परे उसरना, प्रभ दीन दयाल भगत पव तारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दासम करियो, जन नानक दास दासना, बिलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर, हम पाथर हीन अकर्मा, मेरे मन पज राम नामे रामा, गुरमत हर रस पाइये, होर त्यागो निफल कामा रहाओ, हर जन के सेवक से हर तारे, हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हर जपिए वड़े कर्मा, नाम हिन त्रिग जीव ते तिन वड़ दुख सहमा, ओए फिर जोन पवाइये मंद भागी, मूड कर्मा, हर जन नाम अधार है तुर पूर्व लिखे वड़ कर्मा, गुर सतगुर नाम दिड़ाया जन नानक सफल जनमा, बिलावल महला चौथा, हमरा चित लुभत मुहे बिख्या, बहु दुर्मत महल परा, तुमरी सेवा कर न सके प्रभ, हम क्यों कर मुग्ध तरा, मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जन उपर कृपा प्रभ तारी, मिल सतगुर पार परा रहाउ, हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी, तुम देहो मति जस करा, तुमरे संग लागे से उदरे ज्यों संग कासट लोह तरा, साकत नर होछी मत मदम, जिन हरर सेव न करा, ते नर भाग हीन दुहचारी, जन्म मुए फिर मरा, जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाई संतोष गुरसरा दुरमत मैल गई हर भजिया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बहुत है कल युग खेवट गुर शब्द तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाई उपदेश जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर्ष पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो गुरमत हरस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिख रसो राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापे हर मंत्र जम पैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिनस सब रैनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छा सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ अनक उपाव चित विए बहु तेरे सा होवे जे बात होवे नी अपना पला सब कोई बाछ है सो करे जे मेरे चित न चैतनी मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी अंदिन हर नाम त्यागो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे बस स्वामी हम जंत तू पुरख जन तैनी जो नानके प्रभ करते स्वामी ज्यों भावे तिवे बोलैनी। बिलावल महला चौथा। आनंद मूल त्यागो पुरखोत्तम आनंदन आनंद आनंदे धर्म राय की कान चुकाई सब चुके जम के फंदे जप मन हर हर नाम गोबिंदे बटभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बादे ज्यो तेली बलद पबंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे बड़भागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जो नानक आपे आप सब वरतै ज्यो राखै तिवे रहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल कर तेरमा भूलो पैया राम नाम पतित पावनो हर संत भगत तारनो हर पर पूरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसारन हारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विचासा हुई निरासी सोजन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जो नानक तिस पग लावनो। राग बिलावल महला पंजवा। चौप देकर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस स्यों मोहो क्यों मिलिए प्रभ अबनासी तोहे कर कृपा मोहि मार्ग पावो साध संगत के अंचल लावो क्यों तरिए बिख्या संसार सतगुर बोहित पावे पार हाओ पवन चलारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हर सोगते रहे निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्व पंगा होमे पचे दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जाहु कृपाल ता गुरु मिलावे हों फिर उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदर तिसमें लाल गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल जिन चाख्या तिस आया साध ज्यों गुंगा मन में बिस्माद ज्यों गुंगा मन में बिस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजमा। सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघन लागे जप अलख अपेव तरत पुनीत पई गुण गाए दुरत गया हर नाम त्याय रहाओ सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जाका बड़ प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्भगन होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभय रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रतपाले। बिलावल महला पंजमा। सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे गणत गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोहे अनाथ तुमरी शरणाई कर कृपा हर चरण त्याई दया करो बसो मने आए मोहे निर्गुण लीजे रड़ लाए रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़ हर सेवक नाही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जाके संग सदा प्रभ बसै प्रभ का नाम मंतन आधार ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ ਹੋਵਤ ਤਨਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਾਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਚਰਨ ਕਮ ਸੁੰਗ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਰ ਗਏ ਸਭ ਦੁਰਮਤਰੀਤ ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਕਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਜਾਨੜੀਏ ਕੇ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਰਾਖਣ ਕੋ ਤੁਮ ਏਕ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਜਨ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਸੋਏ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾਂ ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸਵਾਮੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਢੀਏ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਨਾ ਵਾਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਾਧੀਏ ਨਿਰਮਲ ਮਨੈ ਹੋਵੇ ਪਰਗਾਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਏ ਪਿਆਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਮਕੀ ਕਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਊਚ ਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੈ ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਖੇ ਫਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਕੇ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸੁਖ ਸੁਖ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ ਮਾਨ ਮਹਤਨਾ ਸਾਕਤ ਹੀ ਕਾਈ ਸਾਧਾਂ ਦਾਸੀ ਥੀਓ ਨਾਨਕ ਸੇਦਰ ਸੋਭਾ ਬੰਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕੀਓ ਹਰ ਚੰਦ ਔਰੀ ਚਿਤ ਭਰਮ ਸਖੀਏ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦ੍ਰਮ ਛਾਇਆ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੀ ਸਖੀਏ ਅੰਤ ਤਜ ਜਾਵਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਭੁਗਣ ਅਤ ਰੂਪ ਰਸ ਮਾਤੇ ਇਨ ਸੰਗ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਧਨ ਧਨ ਹਰ ਸਾਧ ਜਨ ਸਖੀਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏ ਬਸੋ ਬਡਭਾਗਣੀ ਸਖੀਏ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈਏ ਤੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪੈ ਚਰਨ ਕਮ ਲਿਵ ਲਾਈਏ ਤੈ ਜਨਮ ਨ ਮਰਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਰਣੀ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰੇਮ ਬਛੋ ਨਾ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਨਾਨਕ ਹਰੇਕ ਧਿਆਈਐ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਪਿਆਰੇ ਰਤੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਿਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਤ ਮੰਗਲ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਮ ਰੰਗਰਾਤੀ ਮੰਤਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਏ

पंजवा आप वावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन बचन आप ही करना आपन विभु आप ही जरना रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना आप ही छलना जाहि छलना आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही घट घट आप अल्पना आपे विगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बुलावल महला पंजवा उले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरबड़ भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे रहाओ काम क्रोध लो मोहे मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अगन सागर बुढ़त संसारा नानक बहां पकड़ सतगुर निस्तारा बिलावल महला पंजवा तन मन तन अर्पो सब अपना कवन सु मत जित हर हर जपना कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम पेखत सोभा मेरे आंगन रहाओ एनक अनक जुगत कर बहुत बिचारो साध संग इस मने उधारो मत बुद्ध सुरत नाही चतराई ता मिलिए जा लय मिलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत साथ न माया साथ संग सब दुख मिटाया रब रहया प्रभ सब में आपे हर जस रसना दुख न व्यापे रहाओ तिखा भूख बहुत तपत व्याप्या शीतल पै हर हर जस जाप्या कोट जतन संतोख न पाया मन तृपतना हर गुण गाया देहो भगत प्रभ अंतर जामी नानकी बेनंती स्वामी बिलावल महला पंजवा गुरपुरा बड़भागी पाई मिल साधु हर नाम त्याई है पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना किल विह काटे भज गुर के चरना रहाओ अवर करम सब सु रहाओ अवर करम सब लोकाचार मिल साधु संग हुए उधार सिमरत शास्त्र वेद बिचारे जपिए नाम जित पार उतारे जन नानक प्रभ कृपा करिय साधु तुर मिले निस्तरिय बिलावल महला पंजवा गुर का शब्द हृदय में चीना सगल मनोरथ पूरन आसीना संत जना का मुख उजल कीना कर कृपा अपना नाम दीना रहाओ अंध कूप ते कर गहलीना जय जयकार जगत प्रगटीना नीचा ते ऊच ऊन परीना अमृत नाम हरसनीना मंत्र निर्मल पाप जल खीना कहो नानक प्रभ पै परसीना बिलावल महला पंजवा सगल मनोरथ पाई है मीता चरण कमल सिंह लाइये चीता हम बलिहारी जो प्रभु ते आवत जलन बुझे हर हर गुण गावत रहाओ सफल जन्म होवत बट भागी साध संग्राम में लिव लागी मत पत धन सुख सहज नंदा एक निमख न विसरो परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी पनत नानक शरण प्रभ तेरी बिलावन महला पंजवा मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना ता दया तार अपना कर लीना मेरा मंतन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभु घर में आया कर कृपा प्रभु घर में आया रहाओ भगत बछल पै काटन हारे संसार सागर अब उतरे पारे पतत पावन पर बिरद वेद लेख्या पार ब्रह्म सो नैनो पेख्या साध संग प्रगटे नारायण दास नानक दास सब दुख पलायन बिलावल महला पंजवा कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अविनाशी अलख पेवा गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे ऊच महर स्वामी प्रभ मेरे तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ एक बिना नाही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आपो कछु न होवत पाई जिस प्रभ देवे सो नाम पाई कहो नानक जो जन प्रभ पाया गुण धन प्रभ तिन ही पाया बिलावल महला पंजवा मात गर्भ में हाथ दे राख्या हर छोड़ बिख्या फल चाख्या भजक बिंद सब छोड़ जंजाल जब जब आए संघारे मूड़े तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ तन मन तन अपना कर थाप्या करन हार एक निमख न जाप्या महामोह अंधकूप परया पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया बड़े पाग प्रभ कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंद पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद कणे गुर पूरा पूरी जाकी बाणी अन गुणा जाके जाहे न गणे रहाओ संगल सरंजाम करे प्रभ आपे पै मनोरथ सो प्रभ जापे अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी पई सिमर सिमर बधाता साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुर आणिया।

प्रताप दुख बिन से सुख आनंद परवेसा तृष्ण बुद्धि मन सुच कौ माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आला बिलावल महला पंजमा जिते उपजात सह पछान पर ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होय कल्याण राव गुरपुरा भेट्यो बड़पागी अंतर जामे सुगड़ सुजान हाथ दे राख्या करे अपने प्रभ समरथ निमाने अंको माने ब्रह्म पै बिन सगाय खन पितर अंधकार प्रगटे जा नारण सा राधे नानक सदा सदा जाये कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवे थाव रखे गुर सूरे हल पल पार ब्रह्म सवारी कार्ज होए सगले पूरे राव हर हर नाम जब सुख साय दे मजन होवत साधु तुरे अमन जान रहे तित पाई जन मन के मिटे बसूरे ब्रह्म पै तरे छुटे पै जम के घट घट वेख रहा पर पूरे नारिक सरण पर दुख भंजन अंतर बाहर पेखा जूरे बिलावल महला पंजमा दर्शन देख दुख नसे कब न हो अधिष्ठा गोचर जी के संग बसे रहो प्रीतम प्राण आधार स्वामी पुर रहे प्रव्यंतर जामी क्या गुण तेरे सार सुमारी साथ साथ प्रभु तुझे चेतारी कृपा नित्य

कर कृपा प्रभु अपने बल बल जाऊं श्याम सुंदर कवा कत कथा डाके बात सुने जन नारिक दास दात कहत है मोहे करो कृपा ठाकुर अपने बिलावल महला पंजमा हर के चरण दप जाऊं कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हृदय धर मन ध्यान रहो सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सकल जहान रसना रब एक नारायण सचि दुर्गे पाव मान साधु संग प्राप्त जाको तिन ही पाया एहो निदान गाव गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजमा राख लिया सतगुर के शरण जय जयकार हो जग अंतर पार ब्रह्मेर तारण तरण राहु विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सकल समग्री पोखण परण थान थनंतर सर्व निरंतर बर बर जाई हर के चरण जी जुगत बस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जो गाल प्रभ रखदाया हर सिमरत नानक नहीं डर निराग बिलावल महला पंजमा दुपदे कर अठवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद

नहीं का छठीठ मुकरण बड़ प्रताप सुनो प्रभु तुम गो तुम रो कोट गा तेरो नाम हरण तुमरो स्वाव सदा सुर फूलन तुमरो बृद पत धरण करुणा मैं कृपाल कृपा नित जीवन पद नान कर दर्शन बिलावल महला पंचमा श्री कृपा मोहे करो संता चरणा मारो मथ नैन दर्श तन तूर परो राहो गुर कौ शब्द मिरही रह बस हरनामा मन संग तरो तस्कर पंच निवारो ठाकुर सगलो परमा हो मरो जो तुम करो सोई फल मन पावन दुबदा दूर टरो नानक प्रभु तुम ही दाते संत संग लोयो धरो बिलावल महला पंचमा श्री देखा जन स्यो मंगा तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा राव जन के टलबु संपाकन जन से उठन बैठन जन के संगा जन चार राज मुख माथ लागिया सपूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जन के निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जनकी तुर्की अम जन नानिक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंचमा ज्यो पावे त्यो मोहे प्रतपाल

पितर ब्रह्मेरो नाथ को नाथ। जलत अगन में जाने आप उदारे करे अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्त हारे। सिमरत शरम सगले दुख लाथ। सिमरत शरम सगले लाथ। निध निधान नानी कर सेवा अवश्यान सगले आकाथ। बिलावल महला पंजमा। अपने सेवक को कब ना बेसारो। वरदला को स्वामी प्रभु मेरे। पूर्व प्रेत गोविंद विचार राहो।

निषाद शरण पाए जाप जब नाम तुम्हारो प्रेम तंत्र रोग खे माँ मुगत अजान अज्ञानी राखे तार दाये कौ नान गुरु पूरा पेट आप जान रहे बिलावल महल्ला पंचमा जीव नाम

रेखा बजानी अब मैं सहज सुमाने मिठे प्रिय कहानी मोहन लालन पायो रे राव दूजा बिलावल महला पंजवा मोरी आंग जाय दर्शन पावते राजो नाथे साई संत नाभ चरण गाय राव आहे मन अवर न पावे चरणावे चरणावे दिवाल मकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे कै हर लाहे अन ते टूटिय रिखते छुटिय मन हर रस गुटिय संग साधु उल्टिय अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल महला नवा दुख दे क्यों कर सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजाम लगन का जस मृत मुक्त पै जी जानो राव गज के त्रास मिट छिन्हो मैं जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत दया हरानो नानक कहत भगत रचक हर

राखो मन माहिराओ तीर्थ कर भरत फुन राखे न मनवा बस जाको न फल तरमताय तुम मानो साज कहत मैं जासो।

आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, धर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस न्याल नाल क्या चले पहनामी, साच नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभिमाने, गुरमुख नाम सदो सदा, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेविय दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया जो ज्योति जोत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई, दुख काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नान गुरमत मान्या परवारे साधार, बिलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप खाए हों मेटे अंदन, हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति जोत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न साको बिन नावे, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरोह दस द्वार है जाके, अहनस तस्कर चोर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे, मन मुख अंधले खबर न पैया, कंचन कोट बहमानक भरिया, जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द कोट बहम तस्कर, गुर कै कंचन को बह कोट बहमानक भरिया, जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिथा, खेवट खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जगाती नेड़ नावे, नाव को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्शन मंत्र तय, सर्वन बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, हर रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म बस पसरैया, राम नाम है ज्योत सुबाई, गुरमुख आपे अलख लखैया, नानक दीन दयाल पै हैं, भगत पाए हर नाम सुमैया, बिलावल महला चौथा, हर हर नाम शीतल जल त्यावो, चंदन वास सुगंध सुगंध गंधैया, मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बहिबुहिया, सब जगन्नाथ जगदीशर गुसैया, सरण पए से जन उभरे, ज्यों प्रहलाद उदार सुमैया रहाओ, पार ठारे मह चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े उब सुख गए, मन अभिमान बिछड़ दूर गईया, हर गत मित करता पे जाने, सब विद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे, जो तुर लिखिया सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, एक चरणी एक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त ना पहिया, परम बैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते पावन कहिया, बार बार खिन खिन फल कहिए, फल कहिए हर पार न पावे, परे परैया, शास्त्र वेद पुराण पुकारे, तुर करहो खट कर्म दृढ़ैया, मन मुख पाखंड परम बिगोते, लोभ लहर नाव बा पार बुढ़ैया, नाम जपो नामे है गत पावो, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हमें जाय न निर्मल होवे, गुरमुख परचय परम पद पैया पैया।

पावै तित राहे चलैया। बिलावल महला चौथा गुरमुख अगमा गोचर त्याया। हों बल बर सतगुर सतपुर खैया। राम नाम मेरे प्राण बसाए सतगुर परस हर नाम समैया। जन की टेक हर नाम टिकैया। सतगुर की तर लागा जावा गुर कृपा ते हर दर लहिया रहाओ। एहो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मथ मथ तत कढ़ैया। लाल जवे हिरना परगासिया भांडे पाओ पवै तत अइया। दासन दास दास होए रही है जो जन राम भगत निज पैया। मन बुद्ध अर्प तरों गुर आगे गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया। मनमुख माया मोह ब्यापै एह मंत्र सुना।

कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हों तस्वेट हों बल बल घुम गईया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सत गुर शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल न पावे मन मुख पर मैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील न पैया कर कर किरिया चार बधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ के घर बेटा जन्म ने जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत कर भगत भगत करते हर पाया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन में प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा तहारी बां पकड़ नानक कड़ लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी कर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा कही उपमा जात न कही मेरे प्रभ की उपमा जात न कही तज आन शरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल अपार हो जाओ सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे तज आन कते ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़नाव संत उधार मैं तरे सागर पार मन डोर प्रीतम प्री मैं डोर प्रेम प्रीत इह संत निर्मल।

0: प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान
1: प्रभ को सिमरह से पुरख प्रदान।

फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। अंदर सच्चा नेहो,

नामे नाम समावै गुरमुख भगत करहो सद प्राणी हृदय प्रगास होवै लिव लागै गुरमत हर हर नाम समाणी रहाउ हीरा रत्न जवेहर माणक वौ सागर भरपूर किया जिस बड़ भाग होवै बड़ मस्तक तिन गुरमत कढ़ कढ़ लियाउ रतन जवेहर लाल हरनामा गुर काड तलही दिखलाए लायाउ भागहीन मनमुख नहीं लिया तिण ऊलै लख चपाया मस्तक भाग होवै तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाए नानक रतन जवेहर पावै तन तन गुरमत हर पाए राम कली महला चौथाउ राम जिन्हा मिल भया आनंदा हर नीकी कथा सुनाए दुरमत मैल गई सब निकल सतसंगत मिल बुद्ध पाए राम जन गुरमत राम बुलाए जो जो सुने कहे सो मुक्ता राम जपत सोहाय रहाउ जे बड़ भाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेटाए दर्शन संत देहो कर कृपाउ सब दालद दुख लह जाए हर के लोग राम जननी के भागहीन ना सुखाए ज्यों ज्यों राम कहे जन ऊचै नर निंदक डंस लगाए त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाई हर के सखा सखाही से हर के चोर बेमुख मुख काले जिन गुर की पैज न पाई दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरणाए हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बख्श मिलाए राम कली महला चौथा हर के सखा साध जननी के तिन ऊपर हाथ पतावै गुरमुख साध सी प्रभ पाए कर कृपा आप मिलावै राम मोको हर जन मेल मन पावै अम्यो अम्यो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावै रहाउ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावै हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकर खुशी करावै सेवक जन सेवे से बड़ भागी रिद मन तीन प्रतीत लगावै बिन प्रीति करहे बहु वाता कूड़ बोल कूड़ो फल पावै मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगीले पावै हो काट्यो काड़ बाड़ सिर राखियो जित नानक संत चढ़ आवै राम कली महला चौथा जे बड़ भाग होवे बड़ मेरे जन मिलदिया ढिल ना लाइए हर जन अमृत कुंट सर नीके बड़ भागी तित नवाइए राम मोको हर जन कारे लाइए हौ पानी पखा पीस्यो संत आगै पग मल मल तूर मुख लाइए रहाउ हर जन बड़े बड़े बड़ ऊचे जो सतगुर मेल मिलाइए सतगुर चीवड़ अवर ना कोई मिल सतगुर पुरखते आइए सतगुर शरण परे जिन सतगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाइए एक अपने स्वाए आए वह गुर आ गए ज्यों बगुद समाल लगाइए बगुला काग नीच की संगत जाए क्रंग विखू मुख लाइए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराइए राम कली महला चौथा।

जिन जग सिरज समाए आसो साहिब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पाली आए घट घट शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाणो दूर न जानो जिने रचना राचे नाम त्याए ता सुख पाए बिन नाम पिड़काचे।

थिर नहीं कोई, जो उपजो सो बिनस है, परु आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाई,

अनंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाउ कोट पराध हमारी खंडहु अनक विधि समझावहु।

आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखनहार दयाला नानक घर की गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले